होला। थप जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9849043230 9767652429 सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोट सिन्धुली।

0: कृषकले राम्रो आमदानी गर्न सक्छन्।
1: रैथाने बाली बचाऊ, स्वस्थ जीवन, सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं। रामेछाप नगरपालिका कृषि विकास शाखाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: तुम नशे चरस के तेरे नखरे ना किसी के बस के ले बिवनीट पकड़ बीट पकड़ जोर लगा थोड़ा खसके
1: लगा के तेरे नाल नचना